0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।

0: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान, जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது விவத் பாரதி தமிழ் FM 102.3.
4: எப்பவுமே இசைக்கு நாம ஃபேன்.
5: ஒன்பது 21 ஆகுது. 102.3 விவத் பாரதி தமிழ் FM ல கலக்கல அரங்கம் தான் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. ஓகே, நிகழ்ச்சியில அடுத்த நேயர் யாருன்னு பாத்திரலாம். ஹலோ, வணக்கம். ஹலோ,
6: வணக்கம். நான் திருத்தணி தமிழேந்தி பேசுறேன்.
5: தமிழேந்தி, எப்படி இருக்கீங்க?
6: நல்லா இருக்கேன், நீங்க எப்படி இருக்கீங்க?
5: சூப்பரா இருக்கேன், சூப்பரா இருக்கேன். உங்களுக்கான எழுத்துக்களை சொல்லிடலாமா?
6: சொல்லுங்க.
5: முதல் எழுத்து கா, கடைசி எழுத்து டி, டி டி
6: டியா
5: டி.

0: ரெண்டு புலி மூணு பாட்டுக்கு
1: घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी, शुद्ध नमक देना। शुद्ध नहीं समझते? वैक्यूम रेपुरेटेड नमक ही सबसे शुद्ध सफेद होता है।
2: तो ऐसा बोलो ना,
1: वैक्यूम रेपुरेटेड निर्मा शुद्ध नमक जिसका दाना दाना एक समान। ये हुई ना बात।
3: क्यों छोटे साहब, वैक्यूम रेपुरेटेड निर्मा शुद्ध नमक इतना शुद्ध की बच्चे भी जानते हैं इसके साथ।
4: அவசர பொருளா இருந்தாலும் அடிப்படையிலான
5: மேலும் தகவலுக்கு தங்களுடைய அருகில் உள்ள தபால் நிலையத்தை அணுகவும் அல்லது indiapost.gov.in website a visit பண்ணுங்க. 102.3 FM.